भरो नोडर परिच कंपन सहरो बिचोड़ को बेली मा बिचोड़ को बेली माम छंछंगे बगने खारे कोलम अब तो छोरा कुदने बोलम दिन भरी खेल दो मलाई नहीं भूलो सात पर पछि आमालाई सोधो